0: ஆலயம் நியூசிலாந்து இந்து கோயில் சங்கம் பெருமையுடன் வழங்கும் வாராந்திர ஆன்மீக நிகழ்ச்சி ஆலயம் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை தோறும் காலை 8:30 முதல் 104.6 பிளானட் எஃப்எம் அலைவரிசையில் உங்களை மகிழ்விக்க வருகிறது ஆலயம். எங்கள் நிகழ்ச்சியை கேட்க மறவாதீர்கள்.
1: हाम्रो चौतारी यो हो अकल्यान्डको रेडियोमा गुन्जिने नेपालीहरूको एकमात्र ढुकढुकी।
2: यसमा समावेश हुनेछन् नेपाली गीत संगीत, समसामयिक कुराकानी तथा संक्षिप्त नेपाली समाचार।
3: सुन्न नभुल्नुहोला प्रत्येक शुक्रबार साँझ 6:50 प्लानेट एफएम 104.6 अथवा इन्टरनेटमा planetaudio.org.nz/हाम्रो चौतारी।
4: If you're a new immigrant to New Zealand and want some helpful information about living and thriving in this country, go to the Kiwi Way on planetaudio.org.nz. It contains helpful information in your language and we'll be able to answer some of the questions you have on important topics such as education, finding a home and healthcare. You can find the Kiwi Way by visiting planetaudio.org.nz. Click Connections, then select your language from the menu to learn more about the Kiwi Way.
5: Your language, your interests, your community on planetaudio.org.nz.